0: क्या कहते कोरियो
1: तो चुको एफएम
2: आ फकतोकी
3: इतोको की ओ तरिंगा पकड़
4: कोते नहीं फकतोकी कहाँ ना यातु किते तंगता कोरे फकरोंगो किते तीनों नाको ओंगा कोरेरो एकिया ना किया या क्या आता फकरोंगो
3: इतोको की ओ तरिंगा पकड़
0: क्या कहते कोरियो
1: तो चुको एफएम
5: Kumanga tani fa te maunga, kumanga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai, haere mai.